पितरी दे अगवस जानिए पितरी चोर करे वड़ी हद लड़के मुसीबत करे नानक की सुन ले

0: साहिब सिद्धी नचले कई बनिया कमाने कूड़ होवे नानक सिफत दरगास महला दूजा
1: नाले आने दोस्ती वाड़ा रुसो ने हो पानी अंदर इक ज्यों सदा था न थियो महला दूजा होए आना करे कमाना सकेरा दे।

रहत दान भवेक दान विसाह दान प्रुसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुगी अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभालदा दान।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद चक्र चहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश समतोज की जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गणिजै तिरभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राख हो सरनाई अब हम चले ठाकुर पहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावै मार लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार कोई भला कहो पावै बुरा कहो हम तन दियो है टार जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तस राखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज दर्शन।

गए मसकत काल नानक ते मुख इजले केती छुट्टी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब कि तेरे वस तेरा घर बला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माण महत्ता तेज अपना आप जर

0: दीनानाथ मया करो। श्रीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवे।
1: मस्कं भगनंत शैलं कर्दमं तरंत पपील कहे

नितानेओं के तान गुरु ने उट्टियों की उट गुरु ने आसरियों का आसरा धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी महाराज।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती सुटी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

धरत महत दिवस रात दुए दाई दाए खिले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे।

महत दिवस रात दाई दया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै त्रमह दूर करमी आपो अपनी

रंग परंग अनेक न जापन करतबा, जी आया अंदर जी सबके जान ला, सबके तेरे वस तेरा घर भला, तेरे घर आनंद वधाई तुद कर, मान माता दे जे अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दा संदा तुदे अगे।

जो तो देहे सोई हम पाई रहा सब तेरी तो सबनी त्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरी आओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़या संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेख जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सार वरड़ पहिले निवासा पानी पावक तन है किया पंकज मोह पग नहीं चल हम देखा तह डूबियले मन एक ना चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहो ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्रापत मानुख देहरिया गोविंद मिलन की इह तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो जप ताप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जाने हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शरमा जप ताप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो वाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावहो आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिय सब बैरन कौ आज संगरिय पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम हे शाड कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चन चन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दय मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा राख लिहो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तमहो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु

प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी आओ हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन कट कट के पट पट की जान जब युद्ध करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब या करख करत हो कब हो तम मैं मिलत देह तर सब हो जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आपे अपनी भूज उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनादि असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको पेवन पावत बेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आपे अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हवै बैठा कहूँ सिमट भयो संक्रय कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचम भाव आद जुगाद स्वरूप सुजम भाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म ओ सब होई दुष्ट शाह स्वय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल भांसते ताहे उबारा जिन

करी सर्वठौर मोह सहाई दुष्ट दोख तेल हो सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं अन्यों राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यों सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक ना जान्यों श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब

अरे मन तेरो कोई नहीं, खींच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो यह संसार। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस यार, और मुए क्या रोई जो आपा थिर न रहाए। जो उपजय सो बिन सह, दुख कर रोवे बलाए। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चेतया, राम सिमर बैराग। बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुत दारा पहयान लटावै। मान मेरे भूले कपट न कीजै, अंतन बेरा तेरे जी पहली जै। शेन शेन तन शीजै, जरा जनावै। तब तेरी ओक कोई पानियो न पावे। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जप है सवेरा। लिख कतहे ना छूटिए, खिन खिन भूलन हार। बखसन हार बखसल, नानक पार उतार। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सोह कुरसोह चटिया। तद डठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सचा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सज्जन सचा पातशाह, सिर शाह दशाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे।

साहिब जी सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु पर पंच कर पर तन लियावे सुत द्वारा पह आन लुटावे बहु पर पंच कर पर तन लियावे सुत द्वारा पह आन

रामान की ना जपहे सवेरा कहत कबीर कोई नहीं तेरा जपहे सवेरा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु काय, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दा साहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वे साहु। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तिलंगा

बालक प्राबलोचापूर संत जना के बादशाओ तूर जिन जपया तिस कौ बलिहार।

0: श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी। श्लोक महला पहला।
1: बलिहारे गुरे अपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। महला दूजा, जे सौ चंदा उगवह सुर चढ़े हजार।

0: डिठो चाओ डिठो चाओ।
1: दाता करता तुझसे मैं करे बसाओ, तू जाने सबसे दे लैसा है।

सो जाने करतार पौड़े बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर बिच आप रखियो न कर प्रगट, आख सुनाया सतगुर मिले।

पौड़ी पड़िया हुआ गुनहगार तो मी साध न मारी है गेहा काले कालना ते भी नाव बुझारी है ऐसी कला न खेली है जिस तरह गया हारी है पड़िया ते मी अभी चार के बिचारी है मुझे चले सो के मारी है मुझे चले सो के मारी है।

गुर अर्जन गुण सहज विचारं गुर रामदास कार किया प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जन्मत गुर।

हाथ जोग आलीना गुर शब्द मन मानिया अपतीज पतीना गुर नानक सच नीम थाय सत गुर संग लीना गुर अर्जुन घर गुर रामदास अपरंपर बीना गुर नानक सच नीम थाय सत गुर संग लीना गुर अर्जुन घर गुर रामदास अपरंपर

0: गुर अर्जुन कल उचरै तैं राज जोग रस जान्यो, भै निरपो माण्यो लाख में अलख लखायो, अगम गोचर गत गंभीर सतगुर परचायो, गुर परचै परवान राज में जोग कमायो, धन धन गुर धन अपार सर सुपर परायो, गुर गम प्रमाण जर जरयो सार संतोख समायो, गुर अर्जुन कल उचरै तै सहज जोग निज पायो।
1: अम्यो रसना बदन बरदा।

सगल सृष्ट लग बित रहो ते जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेसर कै रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यों अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जन गुर भगत

0: अर्जुन माहे तरी। जग और ना याहे महातम मैं, अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धत ते मत चूक है रे मन, भेद बेभेद न जान बियो, पर तछ हृदय गुर अर्जुन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बोतायो, कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जहे मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नायो।
2: कल समुंदर पय रूप प्रगटे, हर नाम उधारन बसे संत जिस हृदय, दुख दरिद्र निवारन, निर्मल पेखे अपार तास बिन अवर ना कोई, मन बच जिन जानियो पयो तै समसर सोई। तरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूप।

सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसामदी, नूर अरसों कुरसों झटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह जिस पास

अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे। सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे। सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए। रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुविधा छोड़ भये निरंकारी। मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस हंस मह सागर, अकथ कथा गुरबचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार न पुरख कहो को कैसे। त्रिपवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे शरणाई। आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी। भगत वशल पै काटन हारे, हौ मैं मार मिले भगतारे। अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए।
जन्म पदार्थ दुविधा खोवे, आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवे। कहताओ पढ़ताओ सुनताओ एक, धीरज धर्म धरणी धर टेक। जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कौ जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागे, गुर कै शब्द परम पौ भागे। सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच सरूप। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द परम पौ भागै। सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुग है नहीं दूरे। हर रस चोग चुग है प्रभ भावै, सर्वर मह हंस प्राण पत पावै।

बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरकड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे के सांस वासा नाल निभाही

की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जिया जना जना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जिया सरबत साध संगत नूं अपने दारां घरां सिखी सिद्धक परोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दारू परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

वे तगा पैवत वड़ तगा व्रकत ले पहाड़ करे भी या हो कटका गल दसे राह सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंदा नाउ सुजान पौड़ी साहेब हो दया कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म ने होए प्रवान ता खसमै का मैल पाए सी खसमै भावे सो करे।